गई माँ बिगमाई ले जुजु चिरा कहाँ मुहिले बिराए भानी कि मेरा दुई पाउ माता ठोकी दे जन बापला तेरो आनी तो करना दुरी तो धमको भतुआ।

pierda y la cuerda y goye. Uy, gorgo panica y para pugui, te actate a ir aquí. Arcanchu machita y manera sangamada que la satisaba. Eklai gorgo pabiche kuru kuru postaba y madaba. खेलने दिव्य मनी ली शिशु ताई देखनु भाया कृष्णा दे देखी एक नए व्यक्ति ऊंचा सरा ले चिचाये त्याई दाई ले देखे त्योनि जम्मू बाना बीरा ले जम्चोरी साई कना ताले लाना दुबई पर परा भाने माचु पाखे दूर जाना Aquí en Anquina, Quisina, Baradina, Vos.

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: पाउन त
1: हजुर हुन्छ बा सुन्नुहोस् है त
2: दक्षिण भारतका प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिङ्ग तथा तीन धाम यात्रा हुँदैछ प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम लुम्बिनी कपिलवस्तु सेजी सातसो धाम नवलपरासी देवघाट धाम चितवन पशुपतिनाथ काठमाडौँ भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना मातृ मोक्ष पिण्डदान पुन पुन महाश्रद्धा स्थल गयाजी विष्णुपद दर्शन बैतरणी नदी स्नान तर्पण वैद्यनाथ धाम शिवसागर पञ्च स्नान गंगा सागर तथा कपिल मुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन जगन्नाथपुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन बाइसकुण्ड स्नान कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन भीमा शंकर श्री एम्बकेश्वर श्रीडी साई बाबा ग्रीष्मेश्वर दर्शन नर्मदा नदी स्नान ओमकारेश्वर ममलेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन चोटिला चामुण्डा भगवती द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान नागेश्वर गोपी तलाउ भेट द्वारका बिन्दु सरोवर मातृ गया पिण्डदान पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म सरोवर अम्बा देवी दर्शन वृन्दावन मथुरा गोकुल रमण रेती काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान चौरासी घाट दर्शन प्रयागराज अन्तिम गंगा स्नान श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश खान बस्न अटो रिक्सा डुंगा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ समय अवधि 42 दिन रहनेछ प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी सम्पर्क नम्बर 9841870793 9841870793 सादो बाटो चरीको दोलाखा

कलकत्ते कहीं उके मेरे बाजू आए कुछ फिर हनी मास मायू अनि कर दायरों में रोज मुक्तन अनि मोबिना साथ उस पर चला

0: कथा आरम्भ मिति विक्रम सम्बत 2083 साल अश्विन 25 गते आइतबार, सम्पन्न हुने मिति विक्रम सम्बत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार, समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म, स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क 98512 45779, 98549924 09, 98449994 13, 98146999945, 98446560. आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति, जिल्ला शाखा आश्रम दोलखा, उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ, सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: नीलकमल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड को साधारण सभा सम्बन्धी सूचना।
1: यस नीलकमल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड को भदौ 11

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बैनी थोप्लो 7 मेगाहर्जबाट म बजे प्रसाद साहबको त आज विक्रम सम्बत 2083 छ आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन् 2026 अक्टोबर 9 तारिक आश्विन 23 गते शुक्रबार चतुर्दशी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पय भरी।

नगरेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।

सीताजी कल भेटी फर्काउला र फेर हमका हजुरमा गई विस्तार बिन्ती गरेर आई पसौला तिम्रो आहार भई। यति बात सुनि भन्न चिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी निस्कि जाऊ नै भने म बलले पक्रेर दरा घसी। भोकी मैलिँदा उरिन त कपाल खोरे कि केसाबुसाई लट्टा मात्र परे कि खाली भूमिमा रुँदै बसे कि तसाई। राम चित्त दिएर मर्नु बढिया मानेर सीता तहाँ जन्मिनी मतलब लिई खडी भैनी पक्रेर गई महा। एक दिन हे हनुमान म चित्त